0: सेवन प्राप्त नौ वर्ग को वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: animal life life insurance khule rajyo
1: औषधि होइना सचेतना नै सुरक्षा।

0: Samsung, Oppo, Vivo, CG, Infix, MI, Meizu, Colors, Lava, Ampeg, Tecno, IGN brand का मोबाइल हरू, घड़ी, साउंड सिस्टम, डिसोल, पंखा तथा संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामान हरू पाइनु का साथ ही पुराने मोबाइल लिएर नया मोबाइल पनि साटिन छ।
1: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिङगेसी मिलनटोल लेकाली टिकट काउंटर संगई प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ संपर्क मोबाइल नंबर 9841063130 र 9813180307।
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: खरी किडनी को रोग कलेजो को रोग आदि को उपचार
1: दम खोकी मेडिकल फेल छाती को दाग माइग्रेन टाउ को दुखने पिनास गैस्ट्रिक अल्सर नाक कान घाटी आंखा को रोग को उपचार
0: छाला का रोग सेतो दुबी चाया पोतो बंदी फोर दाग एलर्जी खटिरा निको नभएका घाउहर को सफल उपचार
1: थप जानकारी को लागि सम्पर्क सोलुसन आयुर्वेदा पायल फिस्टुला नशा तथा हार्जोनी उपचार केन्द्र नीलकण्ठ नगरपालिका तीन शान्त बजार थादिङ देशी होटल जनजीविका अगाडि
0: फोन नम्बर 010521248 मोबाइल नम्बर 9841414484
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: Sony Extreme Energy Drink.
1: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

उच्च गति भरपर्दो कनेक्टिविटी र बलियो नेटवर्क द्वारा संचालित सिमलेस ब्राउजिंग र स्ट्रीमिंग का लागि डिश होम इंटरनेट अत्याधुनिक प्रविधि को नेपालमा पहिलो पटक वर्ल्ड क्लास इंटरटेनमेंट को आईपीटीवी सेवा प्रदान करने डिश होम इंटरनेट नेपालको एकमात्र नेक्स्ट जेनरेशन वाईफाई 6 प्रविधि भएको वाईफाई 6 राउटरहरूसँग उत्कृष्ट जडान प्रदान करने डिश होम इंटरनेट साथै इंटरनेट टीवी र अन्य सेवाहरू सजिलै व्यवस्थित गर्ने एउटा उपयोगी सेल्फ केयर एप माई डिश होम एप।